फिल्म दाग में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में ये गीत। और दोस्तों, हमने आपसे गुजारिश की थी कि आपकी बातें हमारे साथ बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, ऐसा कभी हो कि हम आपसे कोई भी चीज मांगे और आप हमें ना दें। देखिए, हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से लिखते हैं, चेहरे की चमक और मुस्कान की ऊंचाई और मकान की ऊंचाई पे मत जाना, जिस घर में बुजुर्ग हंसते हुए मिल जाएं, समझ जाना घर अमीरों का है। क्या बात, बहुत सही बात आपने कही नवीन जी। और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमेशा आपकी मेल समय हर दिन आती हैं और आप हमारे नियमित श्रोता हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ कौन जुड़े हैं? जी हाँ, ये राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी चौधरी, वास हिसार, हरियाणा से जुड़े हैं। और ये लिखते हैं कि 2012 को ये भूल नहीं सकते, क्योंकि तब उन्हें रेडियो ने बहुत उनका साथ दिया। वो बहुत शायद बीमार थे उन दिनों, और उनका पूरा साथ रेडियो ने उनका दिया, मतलब वो पूरे समय हमारे गाने सुनते रहे। और लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम के सफलता की यही पूंजी है, शुक्रिया। और लिखते हैं कि एफएम गोल्ड की क्या तारीफ करूं, रोजाना सुनता हूं, पेश करने का अंदाज अच्छा होता है। शुक्रिया आपका कि आप हमारे रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं एफएम गोल्ड।

सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ आप लोग लगातार बनी रहते हैं, आप लोगों की ईमेल्स के जरिए हम आपकी बात आप तक पहुंचा पाते हैं और आपकी बात हम तक पहुंच पाती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बढ़ती उम्र को अक्सर लोग ठहराव जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों से पीढ़ियों तक को प्रेरणा देते रहते हैं। पद्मश्री सालू मिर्जा थिमक्का ऐसी ही एक प्रेरक शख्सियत थी जिन्होंने यह साबित किया कि सेवा और संकल्प की कोई उम्र नहीं होती। कर्नाटक की रहने वाली सालू मिर्जा थिमक्का ने अपने पति के साथ मिलकर वर्षों तक सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका प्रकृति के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। सालू मिर्जा जी नाम है ना, ये जो एक शब्द है ये कन्नड़ भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पेड़ों की कतार। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सड़क किनारे लंबी कतारों में बरगद के पेड़ लगाए थे। 100 वर्ष से अधिक आयु तक उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अपने जीवन में यह साबित किया कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति समाज के लिए और अधिक प्रेरणादायक बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। वर्ष 2025 में उनके निधन के साथ देश ने पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी प्रेरक आवाज को खो दिया जिसने सादगी और समर्पण से प्रकृति सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों सालू मिर्जा जी का जो देहांत है वो 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में हुआ और वे अपने पीछे हरियाली की एक जीवंत विरासत छोड़ गई जो गांवों और लोगों के जीवन में फैली हुई है। उनका पेड़ छाया प्रदान करते रहते हैं और वन्य जीवों का भरण पोषण करते रहते हैं, मिट्टी को समृद्ध करते हैं और व्यक्तियों और समुदायों को प्रकृति को लगाने मतलब प्रकृति में पेड़ लगाने, उसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

तुलसीदास की आवाज में आनंद आश्रम फिल्म से आप ये गाना सुन रहे थे। दोस्ती हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़े हैं, ये है उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, और इन्हें गाने और कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, हमारे एक और नियमित श्रोता सुदर्शन मुखी जी, इनके साथ अनिता मुखी और सिमरन मुखी, ये भी कार्यक्रम को पसंद कर रही हैं और इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। देखिए, प्रशंसा और तारीफें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना इसके साथ एक चीज़ और भी होती है कि आपके मशवरे, आपकी बातें जो हम तक बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा इनका इंतज़ार रहता है, आप अपनी बातें और कभी कभी शिकायतें भी हमारे साथ बिल्कुल साझा कर सकती हैं, क्योंकि आपकी इन्हीं राय और मशवरों के साथ ही हमारे कार्यक्रम और निखार पाए।

दोस्तों, भारतीय संस्कृति में परिवार को हमेशा साथ रहने और एक दूसरे का सहारा बनने की परंपरा से जोड़ा गया है, लेकिन बदलती जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच आज वृद्धाश्रम समाज की एक वास्तविकता बनते जा रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए ये ओल्ड एज होम सुरक्षा, देखभाल और साथ का एक सहारा बनकर सामने आते हैं। वहाँ उन्हें रहने, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अपनी हमउम्र लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। लेकिन दूसरी ओर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या वृद्धाश्रम केवल आवश्यकता है या बदलते सामाजिक संबंधों का एक संवेदनशील सच भी। कभी जिन माता पिता ने अपना पूरा जीवन परिवारों को सवारने में बिताया, बढ़ती उम्र में वही कई बार अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करते दिखाई देते हैं। ऐसे में वृद्धाश्रम केवल भवन नहीं रह जाते, बल्कि समाज के बदलते रिश्तों का आईना भी बन जाते। हालांकि ये भी सच है कि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कई परिवार परिस्थितियों वश या फैसले लेते हैं और कई बार बुजुर्ग अपनी इच्छा से भी इन ओल्ड एज जो जगह होती है यहाँ का जीवन चुनते हैं। इसीलिए आवश्यकता केवल बुजुर्गों को सहारा देने की नहीं है, है ना, बल्कि उन्हें सम्मान, संवाद और अपनापन देने की भी है, क्योंकि जीवन की सांझ में सबसे अधिक जरूरत किसी सुविधा की नहीं बल्कि अपनेपन की होती है। और इस अपनेपन में एक सबसे अच्छा जो एक सहारा होता है वो अच्छा संगीत होता है। और अच्छा संगीत आप कहाँ सुनते हैं? जी हाँ, यहाँ एफएम गोल्ड पे। तो अभी हम बहुत गमगीन, मतलब जिसे कहते हैं एक बहुत ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जिसको सुनकर, जिसके बारे में बात करके हम भावुक हो जाते हैं। और देखिए, अपने घर के बुजुर्ग

हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं। बस हर बुजुर्ग अपने घर में उसी सम्मान और इज्जत के साथ रहे और हर जगह उन्हें वही प्यार और अपनापन मिले जिसके वो हकदार हैं। तो बस यही तो हमारी आशा और आप सभी से हमारी गुजारिश भी होती है। तो ये तो सब खैर बातें हैं ही, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

दूसरा आदमी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, और जीवन का जो सांझ का समय होता है ये केवल बढ़ती उम्र का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो दौर होता है जब व्यक्ति को सबसे अधिक अपनापन, संवाद और सम्मान की आवश्यकता होती है। बचपन में जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, समय के साथ वही हाथ सहारे की प्रतीक्षा करने लगते हैं। आज बदलती जीवन शैली, हमारी व्यस्त दिनचर्या और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच कई बुजुर्ग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। ऐसे में उनके लिए केवल सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि ना एक आत्मीय बातचीत, जी हाँ, साथ में बैठना, उनके साथ बात करना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जो उन्हें अच्छा लगे, वो हंसे, वो खुश रहें और इन्हें लगे कि हाँ, आज भी उनकी

हमें है। तो कई बार ना एक कोई बहुत ज्यादा चीजें इसके लिए दरकार नहीं होती, क्या होता है बस एक हल्का सा संवाद, कुछ पल उनके साथ बैठना और उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, ये भी बहुत बड़ी ना एक ऐसी चीज है जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वे केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वो अनुभव, परंपरा और जीवन मूल्यों की जीवित धरोहर हैं, मानेंगे ना। और इसीलिए क्या जरूरी है, जरूरी है कि जीवन के सांझ में उन्हें यह महसूस हो कि वो अकेले नहीं है बल्कि परिवार और समाज का एक सम्मानित और बहुत प्यारा हिस्सा भी है, क्योंकि उम्र ढलने के साथ जरूरतें कम नहीं होती, बस इन्हें कहने का तरीका हल्का सा शांत हो जाता है। हाँ, और देखिए उन्होंने जीवन भर अपनी सारी चीजों को एक तरफ रखकर हमें बड़ा किया, हमारे लिए अपनी सारी तमाम जिम्मेदारियां उठाई, तो बस उनको आप प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए।

कार्यक्रम चोर मचाए शोर में आप सुन रहे हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, और इसी गीत के साथ मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

London. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडुलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

0: मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी सैड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में ताजा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड, भारत और साइप्रस के बीच

0: यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of

सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से, जहां हम हर बार सिनेमा के सुनहरे सफर से चुन कर लाते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में भी बस जाती है। और आज हम आपको लिए चलेंगे 1974 की उस फिल्मी दुनिया में, जहां रहस्य था, रोमांच था, मोहब्बत की कसरत थी और संगीत की ऐसी मिठास थी जिसने लाखों दिलों को छू लिया। एक ऐसी फिल्म जिसके नाम ने जितनी जिज्ञासा जगाई उसकी कहानी ने उतना ही रोमांच पैदा किया, और जिसके एक गीत ने छूटे दिलों की आवाज बनकर हर गली मोहल्ले में अपनी गूंज छोड़ दी। जी हाँ, तो आज की फिल्म कौन सी है इसका अंदाजा तो आपको गीत सुनकर लग ही जाएगा, और जब आपको अंदाजा लग जाएगा तो हमेशा की तरह अपने जवाब आपको मेल कर देना है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड

आशा जी की आवाज में इस गीत को सुनने के बाद तो आपने अंदाजा लगा ही लिया कि आज हम कौन सी फिल्म लेकर आए हैं, क्योंकि आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं सही जवाब के साथ। तो हम भी आपको बता दें कि आज हम 1974 में बनी एक भारतीय हिंदी फिल्म जिसे सावन कुमार ने निर्मित भी किया, निर्देशित भी किया और लिखा भी था। फिल्म में नजर आए थे अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु और विनोद मेहरा, इन्होंने अभिनय किया था। और साथ ही साथ जो गीत अभी आपने सुना ना, आओ यारो गाओ, इसमें नजर आई थी रेखा। जी हाँ, हम सबकी खूबसूरत सी अभिनेत्री रेखा, जो कि एक विशेष भूमिका उन्होंने इस फिल्म में निभाई थी। और फिल्म का संगीत था उषा खन्ना, इन्होंने तैयार किया था। नाम बताने की जरूरत है फिर भी बता देती हूँ, ये फिल्म है 1974 की फिल्म हवस। फिल्म और संगीत विशेषक राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार जो गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, उन्होंने फिल्म के लिए अपनी फीस कम करने से इनकार कर दिया था। खैर, ये जो किस्सा है जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी जब वो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी। फिलहाल आपको बता दूं कि ये मर्क्यूरी प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म बनी थी और ये एक रोमांस थ्रिलर और एक ड्रामा फिल्म थी। इसकी जो अवधि थी वो 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म थी। और अभी आपने जो गीत सुना आओ यारो गाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गीत में नजर आई थी रेखा। दरअसल ये गाना जो था ये मूल रूप से फरियाल को मुख्य नर्तकी के रूप में लेने की एक योजना थी, लेकिन जब रेखा जी ने इस गाने को सुना तो उनको इसकी धुन इतनी ज्यादा पसंद आ गई तो उन्होंने इसमें भाग लेने की अपनी इच्छा जताई। गाने में रेखा जी ने जो एक ड्रेस पहनी है, जब आप इस गीत को देखेंगे, फिल्म में देखेंगे या वैसे भी कभी आप देखें, तो जो उन्होंने ड्रेस जो पोशाक पहनी है उसको उन्होंने खुद डिजाइन किया था। और अब इस गीत के बाद मैं वो गीत सुनवाने जा रही हूँ जिस फिल्म की जान भी कह सकते हैं, और वो फिल्म कैसे बना, वो गीत कैसे बना था ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो आप रफी साहब की आवाज में ये दिल को छूने वाला गीत सुनिए।

गीत थोड़ा सा इस गीत को मैं रोक रही हूँ और आपको इस गीत से जुड़ी एक दिलचस्प बात बतानी थी। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत है ये, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। और आज भी जो दर्द है इस गीत में वो आज भी महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि गीतकार सावन कुमार टाक और संगीत की जो रिकॉर्डिंग थी उसके दौरान कुछ उनमें मतभेद हो गया था और उसी भावुक माहौल में ये गीत की पंक्तियां जन्मी थी। और शायद यही वजह है कि गीत में दर्द इतना सच्चा महसूस होता है। जब इनके बीच में कुछ अनबन हुई थी और जब उनके घर से निकले तो उनके जुबान पर यही लाइन आई कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। शायद हमने और आपने भी कई बार इस तरीके से इस लाइन को ज़रूर अपनी जिंदगी में भी ज़रूर हमने इस बात को लाइन को यूज़ किया होगा जब हमारी किसी से बहस हो जाती है यारी दोस्ती में घर परिवार में कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो जब ये गीत लिखा गया तो शायद सोचा भी नहीं गया था कि ये गीत इतना ज़्यादा कमाल कर जाएगा, लोगों के दिल में इतने सालों तक इसकी याद रह जाएगी। आपको बता देते हैं कि इस फिल्म में नज़र आए थे अनिल धवन जो कि अनिल कुमार के किरदार में नज़र आए थे, नीतू सिंह थी जो नीतू के ही किरदार में थी, रेखा हमने आपको बताया कि एक विशेष भूमिका में थी, प्रदीप कुमार शैलेंद्र सिंह के रूप में दिखाई दिए थे, बिंदु कामिनी के रूप में दिखी थी, इनके साथ ही विनोद मेहरा थे जो कि डॉक्टर बाली के किरदार में थे, विद्या सिन्हा विद्या कुमार के रूप में नजर आई थी, इंस्पेक्टर महमूद के रूप में महमूद नजर आए थे और भी कई कलाकार थे। लेकिन इन सब कलाकारों ने अपनी कलाकारी का जो इस फिल्म में ये अपना कारनामा दिखाया वो लोगों को आज तक याद है। तो चलिए इसी गीत को हम फिर से आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि बीच में हमने इसको रोक कर ये बात आपको बताई थी। और हाँ, आपको भी अगर इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बात याद है, कुछ खास जानकारी भी आपके पास है तो आप बता दीजिए, क्योंकि वैसे तो आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हमने जब देखा था और कई वर्षों बाद जब हम उस फिल्म से कोई गीत जुड़ा हुआ या फिर उस फिल्म के कोई किस्से सुनते हैं तो वो यादें अपने आप ही जहन में चली आती हैं। तो बस उन यादों को भी आप हमेशा की तरह अपने संदेशों में हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके बाद सिलसिला आपके जो संदेशों को पढ़ने का भी हम करेंगे। बहुत सारी जानकारी अभी इस गीत इस फिल्म से जुड़ी हुई भी हमारे पास है। तो चलिए इस फिल्म का जो फेवरेट गीत है उसको आप इंजॉय कीजिए।

फिल्म की कहानी अनिल कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक अपराधी गिरोह का सरगना एक अमीर परिवार में नौकरी करने के लिए भेजता है। मकसद होता है उस परिवार की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर संपत्ति हत्याना। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उस परिवार की दूसरी पत्नी कामिनी खुद अनिल के प्रति आकर्षित हो जाती है। इसके बाद प्रेम, लालच, छल और रहस्य का एक ऐसा जाल बुनता है कि दर्शक अंत तक बंधे रहते हैं। इस फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आप सुन ही रहे हैं, दो गीत मैंने आपको सुनवा ही दिए हैं और आपको मैंने बताया कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम ये गीत कैसे बना था। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गीत अमर हो गया और उस वक्त भी इस गीत ने खूब लोकप्रियता हासिल की थी और आज भी ये गीत लोगों के पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने इस जो गीत थे इस फिल्म के उनको गाया था और रफी साहब को तो तेरी गलियों में गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का फिल्म वर्ल्ड मैगजीन पुरस्कार भी मिला था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो कि बिंदु थी वो और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका यानी कि आशा जी को ये हवस क्या है ये जो गाना इन्होंने गाया था कुछ देर में अगर होगा तो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, इनके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के नॉमिनेशन इन्हें दोनों को दिया गया था। आपके ढेर सारे संदेश आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उन संदेशों को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। साथ ही साथ प्रदीप द्विवेदी जी देवरिया उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि वेटिंग फॉर योर अवर फेवरेट प्रोग्राम, तो आपका इंतजार खत्म हो गया है और प्रोग्राम अब अंतिम चरण में भी पहुंच गया है। गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाड़ा से सोन सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूल गुरनाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डेनी, मनीष पवार जी लिख रहे हैं कि आज की फिल्म हवस है और इस फिल्म का जो बजट था वो काफी कम था, इसलिए इसे उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में की श्रेणी में रखा जा रहा था। निर्देशक सावन कुमार टाक मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के पास गाने लिखवाने गए थे तो उन्होंने कम बजट और फिल्म के नाम हवस जो रखा गया था इसके कारण गीत लिखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सावन कुमार ने खुद पेन उठाया और फिल्म के सारे गाने लिखे जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। वाह, क्या जानकारी आपने लिखी, भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश

देवांगन दुर्गा प्रसाद पराल पुना देवांगन कृष्णा जी हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। वीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमिला जी ने भी बहुत बेहतरीन जानकारी लिखी हुई है। इस उन्होंने इस फिल्म के बारे में जो अभी तक हमने आपको बताया वो सब जानकारी लिखी है। और रियली आप लोग इस जो भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इकट्ठी करते हैं, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करते हैं, शुक्रिया आपका। अगला जो संदेश है वो हमारे पास फाल्सिका पंजाब खेड़ा से खेड़ा परिवार भूषण विष्णु और बाकी के सदस्य जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा जी हैं। सुदर्शन मुख्य नेता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। और चौधरी बास से राजीव अग्रवाल केशव प्रियांशी विवेक जी हैं। वटिंगखेड़ा पंजाब से इंजी टोमस लवली पिंकी आरती हमारे साथ हैं। संगी नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति राधे दीपक और अंकुर राघव जी हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता हैं। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल जी हमारे साथ हैं। डीवी राणा नेहरू वैर दिल्ली से हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगलेजा पूनम जी हमारे साथ हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार डेनी जी का एक और संदेश आया है। गुरमीत सिंह मीटा साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं। भोपाल व राजस्थान से धर्मेंद्र पर कपिल पूजा परिहार हैं। दुर्गा कॉलोनी हाथी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष योगी बब्बू जब्बू जी हैं। अगला संदेश जो पहुंचा है हमारे पास वो हीरामणि वर्मा जी का दतरंगी भाटापारा से है। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद से डबासी निगत परवीन शेनवास सरफराज फरदीन सुहान अरजान परिवार के सभी सदस्य हैं। अगला ये संदेश हमारे पास मुकेश कासलीकर जी का पहुंचा है जो कि तहसील बरुण अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कवि रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार देव जी हैं। पहाड़गंज मुल्तानी झंडा से अनिल मोहन उषा मोहन चिलू जी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, वो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित जी हैं। रतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्मला विशाल नारायण जी हमारे साथ हैं। और ये जो अगला संदेश है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का आया हुआ है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी जी हैं। रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंजना जी हमारे साथ। ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं। तिरमिरी कुलारसी अकालदी से इंद्रवान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण दिनेश और कालिंद्री जी हैं। और भी कुछ संदेश हैं उनको हम शामिल करेंगे। फिलहाल हम आपको आशा जी की आवाज़ में ही इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत सुनवा रहे हैं।

लखपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन डिंगिया अपार डिंगिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ केंट से दिग्दर्शन और कविता जी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ एक और संदेश में हमारे साथ शामिल।

ये संदेश हमारे पास पहुंचा है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी का। सुदर्शन मुख्य नेता जी एक बार फिर संदेश के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन जी कह रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति शानदार है, बधाई स्वीकार करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ हैं। प्रिंस वर्मा प्रकाश छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं।

दौर में फिल्म का नाम हवस काफी बोल्ड माना गया था। नाम सुनकर दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हुई, लेकिन फिल्म देखने पर पता चला कि इसकी कहानी सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि एक मजबूत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। निर्देशक सावन कुमार टाक ने इस फिल्म से यह साबित किया कि वे सिर्फ रोमांटिक कहानियां ही नहीं बल्कि रहस्य और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरी फिल्में भी प्रभावशाली ढंग से बना सकते हैं।

0: तो हवस सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि 70 के दशक के सिनेमा का वो आईना है जिसमें संगीत की मिठास, रिश्तों की उलझन और रहस्य का गहरा रंग एक साथ दिखाई देता है। तो अब वक्त हो गया है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है, फिर एक नई फिल्म के साथ आपसे मुलाकात होगी सोमवार यानी कि 25 तारीख को। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: उर्दू से समाचार, नमस्कार, ये आकाशवाणी है। चोन कमिशन ने 10 राज्यों तो राज सभा दी 24 सीटा लई 2 साल च होने वाली चोणा लई चोन प्रोग्राम का ऐलान कर दिता है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि BSF ने लगातार देश के माण नूं बरकरार रखे है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों से होर संवेदनशील स्थानों से बंब के झूठे ईमेल भेजन में शामिल नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली छावनी वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। भारत और साइप्रस ने आज नवी दिल्ली में दहशतगर्दी विरोधी नवीनता से टेक्नोलॉजी उच्च शिक्षा की खोज से सभ्याचारक सहयोग से एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना समेत वक्त खेतरों में कई समझौतों का वटांदरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस वक्त खेतरों में दवले सहयोग को मजबूत करने से चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षी मंचों से सहयोग समेत खेतरी आलमी महत्व के मुद्दे

0: बीजेपी की क्यादत वाले एनडीए के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बरसरे इख्तदार यूडीएफ उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 140 रुकनी असेंबली में 101 वोटों से स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। अपोजिशन एलडीएफ उम्मीदवार एसी महीउद्दीन ने 65 वोट, जबकि बीजेपी उम्मीदवार बीबी गोपागोपाल ने 3 वोट हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि बीजेपी ने केरलम में स्पीकर का चुनाव लड़ा हो। नायब स्पीकर के लिए इंतखाब 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लूर्सी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक 2020 के शिमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के पीछे मुबैना एक बड़ी साजिश से है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की एक डिवीजन बेंच ने उमर खालिद की रिहाई के लिए सख्त शराइत के साथ 1 से 3 जून तक की इजाजत दी है। उमर खालिद ने 15 दिन की उबूरी जमानत चाही थी ताकि वो अपने मरहूम चचा के चहलुम की रसूम में शिरकत कर सके और अपनी वालिदा के ऑपरेशन से पहले और बाद में उनकी निगहदाश्त कर सके। अदालत ने हिदायत दी कि खालिद को सिर्फ एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करना होगा और तफ्तीशी अफसर के साथ लगातार रबते में रहना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सरबरा लालू प्रसाद यादव, उनके कुनबे के अफराद और दीगर के खिलाफ इल्जाम तय करने के बारे में अपना फैसला 9 जून तक मुलतवी कर दिया है। इस केस का ताल्लुक आईआरसीटीसी होटल घोटाले में मुबैना तौर पर काले धन को जायज बनाने से है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्म लहर चलने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ 2 तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को 2 गुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नजर कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: In Malaysia, Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Line Kjærfelt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. But Chaliha's exit India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent, 23-21, 18-21, 11-21. In 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की. श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना. 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को. सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से. अब समाचार विस्तार से. भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया. प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है.
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है. पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है. दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है. भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं. इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है.
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं. आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है. हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी

0: मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली

0: सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड

0: अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे

0: बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमृषि, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी,
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया

0: से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।

0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: पाजी सुनिए।
2: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। अब मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे इसको भी डालो।
2: हाँ हाँ
1: ये देखो
2: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
1: प्यारा लग रहा
3: है। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
3: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
3: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगो।

0: 1. कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCE

0: आरटी नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

मुलाजिम से कुछ देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मामली प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मारू गुलकारा शमशाद बेगम से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर

0: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। अमरीका के वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान सोयम चांद मिशन को अमरीका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से 2026 का गोदार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में मस्नूई जहानत एआई से तैयार करदा दुनिया की पहली फीचर फिल्म हेल ग्रिन दिखाई गई। अब खबरें तफसील से। भारत और कुब्रुस ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ मैदानों में एक दूसरे के साथ बहुत से मुआहदे किए हैं, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप का कयाम, इख्तरा और टेक्नोलॉजी, आला तालीम व तहकीक और सकाफती ताउन शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शोबों में दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के बारे में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कसीर मुल्की फोरमों में ताउन समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के मामलों पर तबादला ख्याल किया। अपने मुश्तरक बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान दूसरी न सिर्फ मजबूत बल्कि मुस्तकबिल भी ताबनाक है। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में कुब्रुस से भारत में सरमायाकारी तकरीबन दोगुना हुई है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती मुआहदे के बाद बहुत से नए इम्कान पैदा हुए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को एक बार फिर दोगुना करना है। कुब्रुस के सदर जनाब निकोस ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन भारत ताल्लुकात में पिछले साल काफी वसअत आई है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल इन ताल्लुकात में वजीर आजम मोदी के कुब्रुस के दौरे से शराकत दारी की रफ्तार में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। कुब्रुस के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और कुब्रुस के दरमियान करीबी और तरीना शराकत दारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान अगले साल फरवरी

बन जाऊं किस्मत में।

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: आपने पहली बार किस फिल्म में गाने दिए थे?
1: पहली फिल्म यमला जाट थी,
0: पंजाबी फिल्म थी, तो बहुत जमाना हुआ था।
1: आज से 33 साल पहले।
0: तो कौन सा गाना आपने टेक किया था इसमें?
1: कंकड़ियां फसलां पकियां ने।

0: और गाना आपका?
1: मैं कहा लौट गई पापा ले आ रही
0: जी, गुनगुनाइए उसको।

आपको

0: आगे नहीं चलता अंतराएगा फिर।
1: रिकॉर्ड है कि जब उसने ये सूट दिखाए बादल आया झूम के
0: शाहजहां का
1: जी हाँ
0: जब उसने ये सूट दिखाए बादल

0: आर्टिस्ट प्लेबैक आर्टिस्ट भी था, कोरस के अगर हैं तो वो भी होंगे, और अगर जो म्यूजिशियन थे वो भी साथ होते थे
1: जी।
0: सब लोग इकट्ठे, एक ही माइक्रोफोन होता था, तो उसके लिए इतनी बात है कि हमको तकलीफ होती थी
1: जी।
0: तो एक भी बोलने से कम की हो गया, यानी दूर रह गया या आगे आ गया तो फिर से शुरू करो। अभी तो ये नॉब जो है अंदर रिकॉर्डिंग के हाथ होती है, क्योंकि म्यूजिक कितना रखना है, गाने वाले को कितना रखना है, रिदम कितना आएगा, बड़ा टेक्निकली बहुत आगे हो गया अभी तो। हमारे टाइम पे तो बड़ी बहुत तकलीफ होती थी काम करना।
1: आपका एक नगमा मुझे याद आ रहा है, बहुत पुराना नगमा है, एक बार फिर कहो जरा कि मेरी सारी कायनात तेरी एक निगाह पर निसार। अब तो
0: मेरा प्राइवेट सॉन्ग था
1: जी, हाँ गैर फिल्मी है।
0: हाँ जी।
1: तो वो वैसे तो जाहिर है कि कभी कभी सुनने में आता है, लेकिन आज मौका मिला है कि आपसे इस नगमे को फिर सुना जाए।

वाह वाह वाह। और आपका एक पंजाबी रिकॉर्ड और मुझे याद आया, छिपी दिया चुनी। वाह, बहुत पुराने रिकॉर्ड आप गाने आपको याद दिला रहा हूँ।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लेजा मैंने सुनी ए आर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाजों में रॉक स्टार फिल्म की कव्वाली, जिसे मौसीकी सजाया है ए आर रहमान ने।

अजीज अहमद खान वारसी और साथियों को सामिंग में आप सुन रहे थे, फिल्म थी गर्म हवा। और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, महेंद्र कपूर, अजीज नाजा और साथियों को, फिल्म है मां के आंसू।

साइंस एक्जिबिशन दुनो मोबाइल एसटीएम लेबोरेटरी प्रोग्राम सगानुगा जिल्ला गाउँ पे लोकसो मलसाउ ने कखक लेन जरे एजुआ बस एशियल सब खन फ्रुने आता मन सगस दिफ्यक्स पु लक्षे बेमिन लक्थुत बारगो सुगजरांग असेरेन डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार इस टीवी स्टेशन करगिल ला म्युनिसिपल कमेटी करगिल शोखना ग्राल सिर बस खान डस्टबिन गए प्रोग्राम पे खालिंस दे वक्सला डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज काचो ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी करगिल अयाज अहमद अंग शुक से एक्यूत पिन दियावर प्रोग्राम नगर खान डिप्टी कमिश्नर इस दिची के समा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पे नालजों सो शिरपनस कंपर सख्सो उन सख्ता मीन लोकसो सोल सख सख इसको ला असर बसों को अजा मिमासन ला महकमे खसको नजम से दिला सुन सख मलें क्यों जरें लोक पार बस भी जोस्ते संटे कानूनी कार्रवाई बचा से इंजरांग असर इन खोजा नंबर थाना इमोर यद खान सक्सो गनि फिसत नि शु नि सिथिक पुथे ने इंजरन एलुस खान सक्सो उन सगान थेंचा इंजर सर से दियाना चोस डिप्टी कमिश्नर मिमास अल्लाह जिल्ला करगिल लसांदक ने लिक मो जक पमीना दुना दी समरुल मलिन को मे फिलहाल लखतुत बजरे अशुआ बस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लद्दाख से हेल्थ मिशन के डायरेक्टर तुषार आनंद सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्रास नंगो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास सिजिक्स खोर बस अस्पताल लसो नर दिलुक्स सहूलियत तलुक्स बस दिवसला बुलाक मेडिकल ऑफिसर द्रास डॉक्टर सज्जाद हुसैन इस खोआ फेफसूस बस अस्पताल छोकना फ्रोचुगन योत्खन लोकसो सहूलियत स्कोर लहागोन तांस खन इन मिन द्यावर डायरेक्टर इसे डॉक्टर उन मेडिकल स्टाफ उन अस्पताल लसखापान दुन नतपान नथुक से अस्पताल इंतजामी छोजना खुआ खिदमात उन फ्रोचुक बिमीना थोंखन कबलस बर्दु इरफा उन सगांग इंगियन मसों खुआजा अस्पताल लोकसो मलसाओ ने जिक्सकोर बसर गेबना जिल्ला द्रास मीमासुन लब फ्रोचुक बिसहूलिया तुनिकना अस्पताल स्टाफ उन फ्रलुक सुनिस्त द्रबस द्यावर काउंसलर द्रास अब्दुल समद ने अब्दुल वाहिद द्रास द्रास दुना ए मिंगबियों मेंबर ने एम्बो डायरेक्टर नथुस जिल्ले इरदेलुक से फ्योक्सपुने ए यार्गिया से लासिर पांचा उसको लसल पो बसे अहा गुन तांस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास से खुदी कैंपस बायो डायवर्सिटी मैपिंग पे मीना म्यूली बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जकप नजुम से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लंगोन इन यादिगुम्बा लद्दाख बायो डायवर्सिटी काउंसिल यूटी लद्दाख से डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पे लखथु दिगा घ्रल सिर बस दी तकरीब पर यूटी लद्दाख से एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट राजेश एस ने बिखू संगे सैना से गुजुक बस गवर्नस खेतन बायोवर्सिटी फ्योक्स पुलस के तामीमी ने कॉलेज छोकना लंखन फ्रलुक सुनी द्रबस सब डिवीजन संघ लसो युल मामे अनुको उसना थोकी का नंग इनफेट सुपा खान बाप्स गाउस बसे ग्रां बाप्शा नो यंबो यंबो मिमा सुनला जागजर इला सुनला शकबला बार दून सगां थों सेन रीसा खान बाप्स दून अश्मा मामा वलसाव ने अनु चरपान बाप्स इन जरे जरसे नमजे महकमास तांस खान खसकुन नजम से नमजाओ मई इल जगी शुर सगा सुपाश मखमुक बेंचिक दुशा सिन जरे जरे इन दबरा मिमा सुनला नमखोर पुस बसे गाड़ियों ने छायो पैस को ला खंतिर कबला बार दून इंतजामिया उन चुसर के अपना इंतजामिया दी मिमा सुनला रुति जिक्स मो यदरेन तोन मेट पडुल मास मामो तमाम मिंगन जरंग अशुवा बस इन दिन में दरसक पे पुरगी खबरन गाइजिन छस दबस यशु खुदा नरसामानी फकरिंग

0: जिम लोग कर रहे हैं, बहुत दिनों से जिम कर रहे हैं, बहुत स्वस्थ लग रहे हैं
1: जी। बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जिन्हें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिसमें मांसपेशी का आकार बदल जाता है और वो ज्यादा मोटी हो जाती है
0: जी।
1: तो ऐसा लगता है कि इंसान बहुत हेल्दी है
0: हाँ।
1: परंतु यह एक्सरसाइजेस जिसमें वेट उठा के मांसपेशियों को मोटा किया जाता है उससे हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है
0: जी।
1: ऐसी एक्सरसाइजेस अक्सर हार्ट की डिसीजेस मतलब जिनको हृदय की बीमारियां पहले से हैं उनको मना किया जाता है।
0: अच्छा, आप तो मेडिकल कॉलेज में हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को देखती हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं। हृदय जो है वीक हो रहा है या जो हृदय है वो हमारा कमजोर हो गया है, वैसे नहीं पता चलता जैसे कि आपने अभी उत्तर में ही कहा है, तो कैसे पता चलेगा? क्या डायग्नोस्टिक की टेक्निक है या कोई खून निकाल के कुछ ऐसा हो सकता है जिससे पता चल सके, या ECG या जो भी डायग्नोस्टिक्स की?
1: जी जी, सबसे पहली चीज तो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि जो इंसान है उसको किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, जैसे सांस फूल रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, कोई चलने पर या कोई भारी काम करने पर दिल में दबाव बनने के चलते सीने में दर्द होगा
0: हाँ।
1: या सांस फूलेगा, तो ये सब साइंस हैं कि हम सोचें कि इसको हृदय की परेशानी डेवलप हो रही है, बन रही है।
0: अब खान पान पर आ जाते हैं, खान पान बहुत जरूरी है, आजकल हम बहुत फैटी चीजें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कर रहे हैं, कोई समोसा खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, तो इस तरह का जो फास्ट फूड है वो हमारी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट हो गया है
1: जी।
0: उससे कैसे निकलें और खान पान में क्या हम तब्दीली करें, मॉडिफिकेशन करें कि हमारा जो हृदय है वो खान पान से ही ठीक हो जाए और खान पान एक तरह से दवाई के रूप में काम करे?
1: जी, हमें इसमें हेल्दी डाइट को अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। यह जानकारी लोगों को होती है बट काम के चलते हुए, स्ट्रेस के चलते वो अपना खाने पे भागदौड़ के चलते, आजकल की जो एक जीवन शैली बन गई है जिसमें परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके चलते लोग अपने खाने पीने पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कम समय होने के कारण बाहर का खाना जो कि तला हुआ होता है ज्यादातर टाइम, और फास्ट फूड डब्बा बंद चीजें इनको खाने लगते हैं और इनसे पेट भर लेते हैं जो कि कैलोरी रिच होती है और बहुत ज्यादा इनमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट की मात्रा भी ज्यादा देखी जाती है। तो इसमें हमें अपने दिन का कुछ समय हमें सोचना होगा कि हम खाना क्या खाते हैं पूरे दिन और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने होंगे क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लंबे समय के रिजल्ट को देखें तो जो हम खा रहे हैं उसका रिजल्ट हमें अगर लंबा चाहिए या कि अगर हमें लॉन्ग हेल्दी लाइफ चाहिए तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो जितना फ्रेश फ्रूट्स सलाद का मात्रा बढ़ानी होगी, तली भुनी चीजें कम से कम इस्तेमाल करनी होगी, इसके अलावा पानी सही मात्रा में लेना होगा और खाने के साथ साथ स्ट्रेस लेवल को कम करने और व्यायाम को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी
0: जी। तो आपने अभी बताया कि समग्र रूप से कि किस तरह हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं खान पान के द्वारा, और जो इंटरवेंशंस हैं स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि आज के युग में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: हर चीज का, छोटी छोटी चीजों का हम स्ट्रेस ले लेते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे ही, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तभी चलेगी बाकी नहीं चलेगी। तो स्ट्रेस को हमें कम करना है, खान पान हमें सुधारना है, योग करना है
1: जी।
0: तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा हृदय ही नहीं पूरा शरीर स्वस्थ होगा, और स्वास्थ्य में तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्यता या आरोग्यता आती है। डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: स्वाति शर्मा के واسب في دغة الصدغة نعمل سمج سوانسون سكستا برنامج نزات شربان تجون فيها. برنامج سرطان خن بين غلزار حسين دون برنامج فرتشو خن بين سكينة بانو.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अस्सलाम वालेकुम। आकाशवाणी करगिल कना फ्रचुपयोत्पी प्रोग्राम शर्बाना चुम शिबियसलखुरी गायंग छर्चिगंतानास कथुक चेनियोत नचिशितिना जुने सलाम पो फ्रतमोचन सोंशिक यलेरिन मुछे प्रोग्राम

thinking pukhoi dhe maa ayaan olu suna kho baki chiza tunika baki la sunika kho focus hachamen aur zyada se zyada kho isolate akelapan dupi koshish bachin aur odos basse kho depression hachin तो ज्यादा से ज्यादा रंगे प्रॉब्लम पो इन ला शेयर बे कोशिश बचा क्लोज फ्रेंड्स जो दिया रंगे क्लोज शिका सुने बहुत ऊपर और दोनों बहुत शेयर बसे और दे प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन फिंग में कोशिश बचा रंगे प्रॉब्लम में हिस्सा इन लंचा बाकी एनी प्रॉब्लम में हिस्सा रंग दन में कोशिश बचा एनी मतलब चीज ना रंग संग यान में कोशिश बचा और रंग गट्स ऑफ प्रॉब्लम्स छने ना ओदो ना इन ला शेयर बसे और दे प्रॉब्लम में सॉल्यूशन फिंग में कोशिश बचा रंग स्किन पंखुरे में दुख चे दिमाग पंखुरे दुख पन से चिंता बना देना सोच पे ऑन लुसेल लुसेल ओवर थिंकिंग बस देखो मतलब स्ट्रेस ज्यादा थे बथे ज्यादा स्ट्रेस ना एंजाइटी सो से को डिप्रेशन आ जिन तो देन कम बे फीलिंग आते छ भविष्य में ना प्रॉब्लम सो या तो दो प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम जी जेनेरिक जिसकी वजह से ना स्ट्रेस हो एंजाइटी छ वो शेयर बे कोशिश बचा अगर कतो मतलब चिकचिक ने वो कंफर्ट में छ मतलब शेयर बा कंफर्ट में छ ना मतलब डायरी पे भी मतलब लिख सकते हैं राय प्रॉब्लम्स राय का तो स्ट्रेस छ ना राय स्नी आयो कन पु दिमाग पे आयो कन पु और डायरी कस बे ने छ चिन जमाना कोई इमोशन सख फीलिंग सख और डायरी कभी सो छ तो दो से मतलब रियलाइज छिन की हाँ दी वजह से गंगा स्ट्रेस सो सिंसुक दी वजह से गंगा रहा मतलब ज्यादा एंजाइटी सो सिंसुक और दूसरे से मतलब रहा पता चना उधर सॉल्यूशन फिंग में कोशिश बचा स्किन पे ज्यादा उधर दिन दाओ खुर लुस पर छे छिन जब ना स्ट्रेस आ ज्यादा लुस से खो मतलब रिलैक्स छ चमन अनकंफर्ट लुसिन तो उधर कम बेफिला मतलब या तो किसी के साथ शेयर बचा या तो मतलब रहा डायरी चिक मतलब किसी ने वो शेयर कंफर्ट मचा डायरी दें भी है ना कोई इमोशन सुन फीलिंग सुन बाहर ना उसे खुआ रिलैक्स थपचिन तो तीसरा जो है मतलब यहाँ अल्लाह तरीका जी चीज को एक्सरसाइज बचा एक्सरसाइज नती फिजिकल हेल्थ फिलंग और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ फिलंग माना जरूरी इंसुक तो नती एक्सरसाइज माना नती मेंटल हेल्थ माना फिट लुशिन सुख एक्सरसाइज बचा बसे एक केमिकल चिक रिलीज इंसुक डो फाइन चिक जिसके दोस्त बसे नती स्ट्रेस पो यानी कि एंजाइटी डिप्रेशन पो कम बसता इंसुक तो एक्सरसाइज नती मेंटल हेल्थ फिलंग माना जरूरी इंसुक साथ ही साथ नती फिजिकल हेल्थ पॉ फिट चगत और एक्सरसाइज बस नती मेंटल हेल्थ पॉ जी छत जबाना फिट लूस जी चीज जबाना गातस जी चीन अब गाता दीक्षा ना जी छत जबाना गाती दिमाग पे अनुक देना नेगेटिव थॉट्स पु यो अन दुगत नेगेटिव थॉट्स पु गातस माजक पा पॉजिटिव तरफ आ छ छ मतलब पॉजिटिव से बना गाती गला संबत आ चाया कि पास जानो दे चुक्षिक सों ता जी छचिन जरे ड्यू संबत आ से जैसे ऑफिशियल ला शिबिनो दे ना कोई बॉस मतलब ख खर्च चिस्तिन रे कि कोई दिमाग पे देना नेगेटिव थॉट्स पु मतलब गला खुरी बखानी ओद लास पे मेहनत बेनो दिलास ठीक बस बेने ओतो ने के संभव मचा को इंगा बोस इस खर्च या आगे ला सुंजी छचिन मतलब देने बारे संभव आन मतलब पर अलगेला चीज कते भने कि मंगास दो बचा मेहनत पे और भी मैं यहां पे मंगास दी के मेहनत बेने और भी गाजर गेला बस लास पे दुसुख संभव कते तो छ पास याने दुसुख सम दे दे बारे अन ओवर थिंकिंग बिन दे बारे संभव आन जे दी नेगेटिव थॉट्स सुन मतलब बाहर ला फिंग्स ना चा दो संभव मजाक पकी ना खर्च नी कन खराबी सो यानी कन गलत चलता दो संभव मजाक पर पास यान चीज सो में ना दोन बुलाए बसे मतलब कि मैं आगे और भी मलयाला बेत जरे और भी अच्छे से काम करूंगी दो सुख संभव गति पॉजिटिव थॉट्स सुन गति माइंड यानो जग चा यहाँ जी चीज जब ना गाता ने वो गाता सुने वो दुगना गति गुड कंपनी का मोशन मतलब कि दो सुख गला मी कतो ना गाता दो पोशन गाने बसे गति ला सुन गति गा ला सुख ला शिख बेन दरिक ऐसा वक्त से लेने ना मतलब उदोन इनकरेज भी था कि गति लस पर जब जब इनकरेज भी यानी खराब आगे अंचे तो गति स्ट्रेंथ उनको यानी कि गति खामीन ज्यादा से ज्यादा माफी मांगती गता इनकरेज भी कोशिश बस गति लस भी कि खराब और भी आगे बागे अंचे तो दो सुस्मी कहते ना वो कि गाओ पेसिमिस्टिक होता मोशरा चीज अच्छी अगर खेलती लस पर बना मोशरे ची रिएक्शन हो चीन दू में बागुशिन लाइफ मना डिफिकल्ट होत मुश्किल होत दुबांगन चमें दुख रहा और जो सोच रखने वाले तो सोच इंसान का तना है वो भी दुख चाहिए गाने से वैसे अपना तो स्ट्रेस आ चुका एंजाइटी आ चुका कि मतलब क्या दुबांगन चमें क्या दी क्वालिटी यानी कि क्या दी स्किल पर मैं क्या दुबांगन चमें क्या दू माँ या दिल अस्पु क्या बांगन चमें जरे गाता थे वे स्ट्रेस आते बखा नलास निका खामी फिंग नरिक दी दी चोस इंसान का तो ना यहाँ पर मैं दुख छेदो ना वो दुख मन ची छचिन से बना गाती थे वे गाती स्ट्रेस पर बड़े ही छचिन सो एंजाइटी बड़े ही छचिन सो को दे लास बंगाता बाजिक्षिन सो गाती कॉन्फिडेंस वो लो छचिन सो तो दस का इंसान का तो नहीं बहुत पर दस कंपनी का तो दस दोस्त का तो दस इंसान का तो नहीं बहुत चाहे गाज बसे यार इनकरेज भी दी चीज भी लगा चीज है ये इंटरेस्ट होता रही यार उधर तरफ है मतलब पुल भी कोशिश बचे यानी कि और भी गाता हिम्मत ता चाहे इनकरेज बचे कि क्या दिल है क्या सलाह है दुख क्या बांगे दुख और भी अच्छे

0: से कर सकता है जरे मतलब मता इनकरेज बखनी मिकतने हम बंगता दुपी कोशिश बचा अच्छी उत्सव ना ज्यादा सर गता ला श्याम बिजी दुगत सोशल मीडिया के ज्यादा दुगत मोबाइल के ज्यादा दुगत और मते गती गता गती फिलर टाइम चिक मन स्पेंड बा मतलब गता गता ने हम टाइम चिक गुजारा मन बा मतलब एलोन दुख से रा फिलर रा टाइम चिक फिर से रा ने हम बस पर दा चाहिए यानी कि गा गा सोशल दु नियानो मतलब गा सोशल स्किल से दुख गा गा सोशल गला लस्कतन में लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स है वो दिमाग में मतलब मिखो चाहिए ज्यादा से ज्यादा रहा है बारे में पॉजिटिव थॉट्स क्यों चाहिए कि गाज गा चोर गया ला लाशी बिंदु गाज चामची स्किलफुल दू गाज चामची इंटेलिजेंट दू गाज चामची ची बांगे चाहिए दू दिन गामी में आगे जाके क्या कर सकते हैं दिन गामी बारे में रहा है बारे में संबत चाहिए पॉजिटिव थॉट्स रहा है दिमाग में क्यों चाहिए नेगेटिव थॉट्स मिखो चाहिए रंग ने हम हर दिन मतलब 5 या 10 मिनट रंग ने हम रत से रंग ने हम टाइम स्पेंड भी कोशिश बच्चे दिवस बस चिंता पीस थोप चिंसुक रिलैक्स है चिंसुक अति मन पर शांति थोप चिंसुक आइसोलेशन में मीन ने बहुत ज्यादातर स्पेरा सोशल वेलबिंग रहने कोशिश करना चाहिए मतलब मीन ने बहुत ज्यादा मिलजुल के स्पेरा दूस बसें गाता स्ट्रेस दिमाग में मतलब नेगेटिव थॉट्स योदना उदन बिंग सोसे गति फोकस पु गति लास्ट का चोला शिपिन उदन एक सचिन सुख बाकी गाते गति लाइफ यानो मतलब सुचिया मेंटल हेल्थी प्रॉब्लम ची योद नरिक दून इंट्रोड्यूस बसे गतन डे टू डे लाइफ यानो दून इंट्रोड्यूस बसे दिलास कुन का बे कोशिश बन रही आगे मतलब जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो मतलब उसका सोल्यूशन हो सकता है मतलब कम से चिंस पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पो कम से चिंस
1: नहीं सकवा इंतेज जैन पानी खाना मेंटल हेल्थ स्कोर डास्पेरा रिंग पीन हृदय मजा इंतेज दिस्पेरा

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: दूंगा, चमची इंटेलिजें दूंगा, चमची चीबा इंगन चे दूंगा, दून गामी मैं आगे जाके क्या कर सकते दून गामी बारे नो रहा बारे नो संबत आंचे पॉजिटिव थॉट्स उन रहा दिमाग रंग क्यों चे नेगेटिव थॉट्स मी क्यों चे रंग ने अंबो हर दिन मतलब 5 या 10 मिनट रंग ने अंबो थोड़ा तो से रंग ने अंबो टाइम स्पेंड भी कोशिश बचे दूस बस ये चिंत मैंने कहा पीस थोप चिंसुक रिलैक्स है चिंसुक थी मन पर शांति थोप चिंसुक आइसोलेशन में दुख मी ने अंबो ज्यादातर स्पेरा था सोशल वेलबिंग रहने कोशिश करना चाहिए मतलब मी ने अब ज्यादा मिलजुल के स्पेरा था चाह दूस बस गाँव स्ट्रेस दिमाग में मतलब नेगेटिव थॉट्स जो ना उधर बिंग सोचे गाती फोकस पे गाती लास्ट का चला शिपिंग ना उधर निकल चिंसु इन बाकी गाते गाती लाइफ यानो मतलब सोचिया मेंटल हेल्थी प्रॉब्लम जो ना रिक दिन इंट्रोड्यूस बसे गतन डे टू डे लाइफ यानो दिन इंट्रोड्यूस बसे दिला स्कून का बे कोशिश बन रही आगे मतलब जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो मतलब उसका सॉल्यूशन हो सकता है मतलब कम से चिंस पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पे कम से चिंस
1: नहीं सकता इंतेज जैन पानी कना मेंटल हेल्थ स्कोर डा स्पेरिंग यानी युक्त पीन रदयंग मशाले इंतेज दिस पेरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नरेंद्र आकाशवाणी दिल्ली ना खबर लाइन यानी चुत पिन मीडियम वेव गदियो आकाशवाणी करगिलिन
1: अस अदालत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कारगिल इतला देते हैं जैनब बानू जोजे मरहूम मोहम्मद हसन साकिन मिंजी बनाम मोहम्मद अली मोहम्मद इब्राहिम वालदे मरहूम मोहम्मद हसन हकीमा बानू जोजे मोहम्मद इब्राहिम साकिन मिंजी साइलान ने एक दरख्वास्त बगर्ज हुसूल जानशीनी सर्टिफिकेट तोफी मोहम्मद हसन वालदे मोहम्मद अली साकिन मिंजी जिले कारगिल बापत एक रकम 10,25,276 पेश की है। लिहाजा आवाम उन्नास को वज़ीर इश्तिहार मुल्ला किया जाता है कि वह अपनी उजरात 29 मई 2026 तक अदालत हाजा में पेश करें। वक़्त गुजरने के बाद कोई भी उज़्र व एतराज़ काबिल कबूल न होगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पेमेंट फेल लेकिन पैसे तो कट गए।
2: गई मेरी मेहनत की कमाई।
3: हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करे मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी, नहीं तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप।
4: या बिल,
3: मेरी फीस। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव कदि आकाशवाणी करके वक्त फितोगत सत्रुग नाम मिनट चौगा सोसुक कसता बहरतविल चिंगन नजर गुलाम रसूल शरीफ।

0: sab chang de rin so ka sa ha ti du sab se na ba mo sa se no se ba phu na se no se tang se sanga mo intizar ba se ni de ka na ba son ba cha ta na du la ki ya song ma na zan chi sum tang cha o wa li ka cha na phe tang cha de ka na pha ting na yo tha ne pha ting tang cha मैंने जुली कहाँ से दें गुराम की यहाँ कारेक तंग से
1: न्योपसा
0: ता न्योपसा कहाँ से स्टेक कहाँ से स्टेक स्टेक ओके सर यूँ मुझे ना ये तो कहते ये तारीन जो ना स्टेक कहाँ मार गोते मत दब दबा वासे मन यंग
1: चाहे दब दबा का तुक चिका बात मिल रहा
0: तासगा मन तारी ब्रांचिल तंग से मन दुक्सा फुचांग ससुप संग

0: मिल ते दो ना चीन मिल ते दो मना आते जैसे फ्रू सा आता जर वाइन की आते ब्रश तो एक साल पे दो साल पे फ्रू आता थोड़ी जब आई ना खुद सुन ओन ओचिन मिलते तुन अचानक तो दू पेरेंट्स कंचिन पेरेंट्स जो है कोई फ्री ख्याल रख परोशिन जैसे फ्रू सा ब्रश था मैं चाहिए दे क्यों मैं वोशिन आते ची बा वोशिन जब ना जैसे कॉटन चिक सोक बा वोशिन आते दिन अचंग क्लीन वाटर चाहते कॉटन चिक सोक से खुद गम्स या खुद सोने का गांव जान चाहते और या खुद उर्जेंट हो सीन चाहे उदून पूरा प्रॉपरली क्लीन बार वोशिन चाहे दू चंग आते मिलती थी फील ची बस सब वोशिन बाई बात ही करना आते तीन या चार साल तक पेजर देखो थोड़ा अकल ची मना देना मना एक तो आता दी दौरान आता खुआ डेंटल विजिट जाता हम क्वेश्चन कैविटीज में छा चुपी प्रिवेंटिव मेजर्स का तो चीन फिलिंग टाइप से जोशिक या लिक्विड जोशे हो चीन तो सू अगेन पिके तान चीन वो तो हम छे चीन बना खुआ फर्दर केरीज मना इन फ्यूचर मना केरीज है चमेन खुआ हल्का नंबर जन जाएंगे चीन दून सख्ती फ्रुसाई फिला ऑलरेडी सोन स्किन हो कैविटी में छा दून फिला आचेस फ्लोराइटी जेल का तो चीन दून यूज बना दून जहाँ फर्दर खुई प्रिवेंशन बसाया पहला गुमा प्रिवेंशन छा नाते जैसे सिक्स छः साल के नाते बारह साल तक पे आते अगर फ्रुसाइसाना का तो उदय उनको ज्यादातर पुंगाती उदय ना चिंदे मिल्क टी तुन शेड ऑफ सचिन परमानेंट टू तुन ओचिन छा ना छः साल के ना परमानेंट टू तुन से मस्टार्ड है चीन छा ना आती पेरेंट्स सुनिश्चित बनुक आती परमानेंट सो हा पेरेंट्स का पता हो चमिन की गह सो चिन गांचमिन छा ना आते जैसे खचिक आता फ्रू ने कंप्लेन होने दे सोन टेरा मेरा स्किन यूज है हाँ छा ना का तो उदी ट्रीटमेंट पांग बारह कना चौदह साल पंद्रह साल तक फेक खुई सुन टेरा मेरा सुई योदना का तो स्किन योदना उल्टा स्किन योदना गज और स्किन योदना का तो उदना ट्रीटमेंट होना था बाइन चिन इसलिए हमेशा जो है गर्ल फ्री सो यूनटेक्ट हों या दोनों उसमें का तो योदना का तो डेंटल के खर्च पहला ट्रीटमेंट जितना बेद उतना है जो है कॉस्टलियाँ हजामिन और पहला जो है अर्ली ट्रीटमेंट बना का तो खुई सुल डंग मी प्रोग्नोसिस ठीक हो चिन
1: कसे जुएल मैंने हिसाब से मांस की गाती सोनी का जो ख्याल जब चीन गाते गाते ची चिल्लास का तो बार गोशिन डिफरेंट एज ग्रुप जब सुनते प्रूनी गाते ची बार गोशिन छोगो सोंसे क्या अपने ची बस से गाते गाती सोए की यार बार गोशिन जरे यार मैंने हिसाब से मूल छाना मैं जो गाती तो उस पुसंग इजाजत तंग में दो गाती स्टूडियो गाड़ी नजुम से वक्त वहां था मतों ने लोग आखिर भी गाय रहा दिया टिप शालुक बेट पे की गाता और आलियरी का सोच मैसेज शुरू गाती यान खानन सब पे बख्शिस
0: बख्शिश नहीं मैसेज पुदेना इनकी हाँ जितना हो सके जितना मतलब ओवरऑल अगर हेल्थ ताना का तो सबसे ज्यादा ओरल हेल्थ माना जरूरी है ओरल इन ना का तो बाकी ओरल हेल्थ रिलेटेड टू सिस्टमिक हेल्थ मान इन्हा ओरल ही करना स्टार्ट छा तेरा पूरा यारी सिस्टमिक यारी डिजीज ना अच्छी दूंगा क्योंकि एक अगर बच्चे मेरे भी नॉर्मल बच्चों में भी अगर देखेंगे ना जो अच्छे से ढंग से खाना नहीं खाते दाना जाना स्वयं जान खाती जर्मो बिन जाना का तो उदी हेल्थ पता का तो कमजोर सुन चिंदी फिर जाना प्रॉपरली जचामिन पता है चिंदे पूरा कमजोरी पेरेंट्स का चीज खरीदो मत हाँ पेरेंट्स का चीज लगता मत छाना खो जिंदी फिर माँ जान जामिन स्वाथ हमसे दोगुन लोग छाना का तो छाना का तो हमेशा जो है यंते विजिट बचा मी देना ये एडवाइस
2: रेंटेस प्रोग्राम ये न्यूज़ पिन साइंस मैगज़ीन प्रोग्राम प्रचुकन पुन में तोहिरा बानो मीडियम वेव के द्वारा आकाशवाणी करगिलिन वक्त पर खबरें ने संसुक कसता पुर्की खबर ला ये

0: के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामा तकसीम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। ये रोजगार मेला मुल्क के 47 मुकामात में मुनाकिद किया जा रहा है। इन रोजगार मेलों को कलीदी अहमियत हासिल है और उनके जरिए से अब तक मुल्क भर में 12,00,000 तकरीरनामे तकसीम किए जा चुके हैं। नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन जम्मू की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि इस तकरीब के दौरान कल जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 220 नौजवानों को भी तकरीरनामे सौंपे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 10 रियासतों की 24 राज्यसभा नशस्तों के लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 नशस्तें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 नशस्तें, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 नशस्त शामिल है। कमीशन के मुताबिक नोटिफिकेशन 1 जून को जारी होगा, जबकि 18 जून को पोलिंग अमल में लाई जाएगी। वोट शुमारी का काम भी अमल में लाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी स्थापन में श्रद्धालुओं के लिए तामीर किए गए नए वैष्णो देवी भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि यह नई सहूलत वहां आने वाले अकीदतमंदों के लिए कायम करने के तजुर्बे को मजीद बढ़ाएगी, क्योंकि ये श्रद्धालुओं के रश को देखते हुए एक आरामदेह बुनियादी ढांचे के साथ तामीर की गई है। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल कटरा में ही अक्षय पात्रा फाउंडेशन की मरकजी बावर्ची सहूलियत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा,
2: किसी महान राष्ट्र की असली पहचान उन साधारण पलों में छिपी होती है जहाँ मानवता अपने सबसे सच्चे और सहज स्वरूप में दिखाई पड़ती है। उन पलों में सबसे महत्वपूर्ण पल वह है जब एक बच्चा स्कूल में न्यूट्रिशन से पूर्ण संतुलित भोजन प्राप्त करता है। देखा जाए तो हम सामान्य जीवन में अक्सर विरासत की बात करते हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बचा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंप कर जा रहे हैं।
1: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने, निजी इसलत में फंसे नौजवानों की बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान पर नजर गुजर रखे हुए हैं और वो मुख्तलिफ जिलों में पद यात्रुओं और बेदारी प्रोग्रामों की क्यादत कर रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत वो कल शिपाया में मुनाकिद होने वाली पदयात्रा में शिरकत कर रहे हैं। मनुष्यात से मुतालिक एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम,
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक आम शहरी खान बिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: बात करना चाहूंगा आजकल के माशरे पे और हमारी नौजवान पीढ़ी पे जो नशे के दलदल में बुरी तरह से फंसती जा रही है। गुजारिश करता हूँ आजकल के जवानों को कि हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी सारी स्पॉन्सरिंग स्कीम्स लाई है, कोशिश करें इस दलदल से निकलें, अपना फ्यूचर बनाएं, कोई बिजनेस खड़ा करें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। हमारी पुलिस बहुत अच्छा रोल निभा रही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन जम्मू में मनुष्यात से मुतालिक एक गलत कदम नामी बेदारी शॉर्ट फिल्म का पोस्टर जारी किया। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दरियासना सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने मनुष्यात पर काबू पाने के लिए तालीमी इदारों और कोचिंग मराकज में स्क्रीनिंग के अमल को लाजमी बनाने पर जोर दिया ताकि इस लत में मुलवस नौजवानों की निशानदेही की जा सके। वो आज श्रीनगर में ड्रग डी एडिक्शन से मुतालिक मुनाकिदा एक मीटिंग से खिताब कर रही थी। पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए अमरोही करना के जहीर अहमद टंच और बशीर अहमद टंच नामी ड्रग स्मगलरों के 2 रिहायशी मकानात को अटैच कर दिया है। पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन 2 स्मगलरों ने ये मकान मनुष्यात से मिली आमदन से तामिर किए थे। पुलिस ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भटनौर अवंतीपुरा में एक बेदारी

0: ग्राम का इनाकार किया। पुलिस ने गिरडी खल चरसू में एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुरंदो कोलगाम में ड्रग स्मगलरों की जायदाद को मुनहदिम कर दिया है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर में काबीना सब कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर गैर मुमकिन खडस से मुतालिक मामलात का जायजा लिया। उन्होंने कमेटी रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम की तजावीज तलब करने पर जोर दिया। सेहत और तिबी तालीम और तालीम की वजीर सकीना इतू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बड़गाम हल्के के तालीमी और तिबी निगदाश्त के मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने शोबों में जारी स्कीमों के मौसर अमल आवरी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हल्के के दूरदराज इलाकों में लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात दस्तियाब कराने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जानी चाहिए। सिविल सेक्रेटेरियट श्रीनगर में आज कई अवामी वफूद जंगलात और माहौलियत के वजीर जावेद अहमद राना से मुलाकात हुए और अपने अपने मसाइल से रोशनास कराया। वजीर ने उन्हें तमाम मसाइल मयाद बंद मुद्दत के अंदर हल करने का यकीन दिलाया। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज राबता दफ्तर कनाल रोड जम्मू में एक अवामी दरबार के दौरान मुख्तलिफ वफूद और अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मुशीर मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदे ने आज पीसीआर श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ईद उल अजहा और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम और सयाहों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वह अयाम मुकदसा के लिए सलामती समेत तमाम दीगर इंतजाम को हतमी शक्ल दें। उन्होंने कहा कि हसास मुकाम पर चौकसी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कौम दुश्मन अनासर के अजायम को नाकाम बनाया जा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। शोबाई तालीम समाज में एक मस्बत बदलाव लाने में कलीदी रोल अदा करता है। ताहम वक्त की जरूरत है कि शोबाई तालीम को जदीदियत से हमकिनार करने के साथ साथ इसमें जदीद तकाजों के मुताबिक बदलाव लाया जाए। इस तालुक से दुबई में मुकीम एक बहनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: सबसे ज्यादा जो अहम इस वक्त जरूरत है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि हमारी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ने की जरूरत है। हम अपनी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ करके सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पर वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। तो इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है और उसे इस बात के लिए भी तैयार करना है कि ये जो ग्लोब है या ये जो यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है, ये हमारे पास एक अमानत है और हम उसके कस्टोडियन है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी न सिर्फ ये कि अडल्ट्स पे है बल्कि बच्चों पे है, क्योंकि बच्चे तो ज्यादा उसका इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में। अडल्ट तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, इन बच्चों को ही आगे फेस करना है उनके चैलेंजेस को। तो हम उन्हें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन से ही उन चैलेंजेस से रूबरू कराएं।
0: जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने का अमल जारी है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: अभी तक हमारे पास अराउंड 30,000 से ऊपर एप्लीकेशन आई हैं जिन्हें रजिस्टर किया है स्टूडेंट्स ने। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि उनको एक बात का ख्याल रखना है, जो हम देख रहे हैं अभी तक जो जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उन्होंने कॉलेज भी मिनिमम रखे हैं, चॉइस भी मिनिमम रखी है। उससे यह है कि जैसे जितना इनटेक किसी प्रोग्राम का है उससे 20 times 30 times एप्लीकेंट्स उसमें आ रहे हैं। स्टूडेंट को लग रहा है मुझे इसमें एडमिशन मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट को ख्याल करना है कि एडमिशन उसको मिलेगा ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड द मेरिट। तो इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है स्टूडेंट को। 27 तारीख तक हम ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस, चेंज ऑफ प्रेफरेंस ओपन रखेंगे स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट अपने कॉलेज की प्रेफरेंस, अपने प्रोग्राम की प्रेफरेंस चेंज कर सकता है। तो 27 शाम को ये बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। आज शाम से हम एक रैंक लिस्ट इशू कर रहे हैं जिससे उनको आइडिया आएगा कि उनकी क्या पोजिशन है किसी कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया है। दूसरी बात, उनको बहुत सारे कॉलेजों में अप्लाई करना चाहिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। उनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, मे बी दे विल गो अप टू 10-15 प्रेफरेंसेस सो दैट देयर एडमिशन इज गारंटीड। मैं सब बच्चों को अपील करूंगा कि हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है पोर्टल पे, तो वो इमीडिएटली व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के थ्रू उनको हम अपडेट्स देते रहेंगे।
0: جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. جموں میں لو سے بچنے کی خاطر عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا.

0: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सके।
1: समाज के बुजुर्ग तबके को दीगर तिब्बी मसाइल के साथ साथ बाज़ औक़ात बेकाबू ब्लड प्रेशर का भी मसला दरपेश रहता है, जिसके लिए उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बात की मजीद वजाहत कर रहे हैं बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम।
2: रिसर्च कहता है कि हर 4 बुजुर्ग अफराद में सिर्फ एक का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बगैर किसी वाज़े अलामत के दिमाग, दिल, गुर्दों और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर यानी 140/90 से ज्यादा स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और याददाश्त की कमजोरी का सबब बन सकता है। रोजाना ब्लड प्रेशर चेक करना, दवा वक्त पर लेना, नमक कम खाना, वॉक करना और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना बहुत जरूरी है।
1: आकाशवाणी श्रीनगर के एक साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अशरफ भट्ट आज सुबह रावलपुरा श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 76 बरस थी और उन्होंने 37 बरसों तक आकाशवाणी श्रीनगर में अपने फरायज अंजाम दिए। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरविंदर सिंह और स्टेशन के दीगर अमले ने भी उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंभी के साथ ताजियत की है। साबिक ब्रॉडकास्टर अब्दुलरहमान भट्ट ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार ने मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के पूरे अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। दूरदर्शन के साबिक एडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी ने मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया।
3: मेरे साथी एक बहुत ही पुरखलूस शख्स थे और जो काम करते थे वो लगन से करते थे, मेहनत से करते थे, बहुत ईमानदारी से करते थे। इनके साथ एक फैमिली रिलेशंस भी रही हैं, क्योंकि रेडियो कॉलोनी में जिस क्वार्टर में रहते थे, नीचे वाले क्वार्टर में रहता था, ये ऊपर वाले क्वार्टर में रहते थे। और दूसरा एक रिलेशन भी बनता था, इनके बच्चे मेरे बच्चों के बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और हर दुख सुख में मेरे साथ रहते थे। तो ये इनका जो इंतकाल है ये पूरी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक एडीजी बशीर आरिफ ने मरहूम को इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया।
4: मोहम्मद अशरफ भट्ट एक तो वो खुददार आदमी थे बहुत, दूसरा वो ट्रबल शूटर थे। कोई भी काम रहे दफ्तर का खास तौर से या किसी का जाती काम, वो पेश पेश रहते थे। मैंने कभी उनको किसी को सताते हुए, किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा दफ्तर में या दफ्तर से बाहर। हमेशा दूसरों की मदद और जो भी काम उनको सौंपा गया, मेरे साथ उन्होंने काम किया है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में, बड़े पुरखलूस शख्सियत थे और काम जानते थे अपना ब्रॉडकास्टिंग का। दूसरा किससे किस तरह से पेश आना ये भी उनका खासा था, अल्लाह उनकी मगफिरत करे।
1: मरहूम का रस्म चारिम 24 मई सुबह 10:30 बजे उनके आबाई मकबरा वाका जियारत सईद मंसूर जालडकर में अंजाम दी जाएगी। बुलंद पाया वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह का 661वां उर्स मुबारक कल नहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी जियारतगाह वाका खंड का हिमोल्ला श्रीनगर में दुरूद असगार और खत्मातुल मौजूमात की मजालिस जारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला नीज कई दीगर लीडरों ने भी इस उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी के इल्मी और रूहानी कमालात से जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा इस्लाम के नूर से मुनवर हुआ। जमीयत हमदानिया के सरबरा मीर वाइस मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी उर्स शाही हमदान के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस तालुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
5: पीछे हमारा जून महीने में जो स्कीम आया था मिशन युवा का, उसमें हमने 25,000 लोगों को ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे लोन्स में हमने दिए हैं। बेसिकली हम काम ही कर रहे हैं इस एरिया में सबसे ज्यादा, तो हमारा कोई ऐसे

जय हिंद। फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम सुनने वाले तमाम फौजी भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हमारा मोहब्बत भरा सलाम। तो लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में समाप्त कीजिए ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पेमेंट फेल,
2: पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए।
1: गई मेरी मेहनत की कमाई।
3: हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करे मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी, नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप।
4: या बिल,
3: मेरी फीस। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
6: वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है।

आप समाप्त कर रहे थे जावेद अली और कैलाश खेर को, फिल्म थे दिल्ली 6। इस गीत को कलमबंद किया था प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था एआर रहमान ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश में आइए समाप्त करते हैं मोहम्मद अजीज और साथियों को, फिल्म है कब तक चुप रहेंगे। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ आज का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। सामिन अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी करगिल है। वक्त खबरों का हुआ चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप

0: इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित

0: समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की

0: सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी, टेटनिस और डिप्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है, जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का ताउन करेंगे। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज़राए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आजाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदाम और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन, पायदारी और आलमी पेशरफ में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूद पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये नीट UG 2026 इम्तिहान के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे, जिसे इस महीने की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 GW रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरअज्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में जारी IPL क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए
256 रन का निशाना दिया है।

0: पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दरिया तेज आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी अंग्रेजी दोनों और दियांग खबर लाइन मीडियम वेव कथित आकाशवाणी करकिलिन वास्पोत्सानिक तो सोतर गुना फेत संसुक कसता रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल ग्रहलिका न्यूज रील प्रोग्राम यन नजत करगिल नामा सिरतंग हन पॉइंट मोहम्मद अब्दुल्ला फ्रोचुक हन पॉइंट खतीजा।

0: बहुत सारे लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, बहुत सारे लोगों से हमने मुलाकात की। हम सब लोग मिलकर यहाँ से, करगिल वाले भी यहाँ से तशरीफ लाए थे, वो हम किरण रिजिजू से हमने मुलाकात की। बाद में हमने डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज जो पहले पेंडिंग थे उनका हमने रेस किया। हम बहुत ही खुश नसीब है कि हमारे से पहले, हमसे पहले हमारे जो कमेटी बैठे थे मोहम्मद अली मजास, उनकी क़यादत में उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन अब उसको अमली जहमा पहनाने की जरूरत। तो इस बिना पर मैं आपको पॉइंट वाइज कहूंगा, हम एलजी साहब के पास जाके पासपोर्ट केंद्र सेंटर का जो ऑलरेडी पाइपलाइन में था यहाँ करगिल में खोलने के लिए, हमने उनको भी इसी तरह से रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से हम मिले, इसी तरह से जेईडी, जो जितने भी हमारे कंसर्न थे, हम सब उन लोगों से हमारे कमेटी को मैं लेके करगिल से भी हमारे कमेटी दो दो दफा हमारे मेंबर्स साहिबान वहां पे तशरीफ लाए, उनको लेके हमने वो सारा टेकअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम सबसे पहले हम सबने मशवरा करके हम ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर साहब के पास जाके अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हज फैसिलिटेशन सेंटर, या यहाँ पे जिस तरीके से हम हज हाउस बताएंगे, उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था। जो पहले भी इसका फाइल चल रहा था, इसका ये नहीं है कि ये पहले ही हमने किया, तो लेकिन उस वक्त क्या था, उन्होंने तीन ही कनाल का प्रपोज किया था, तो उन्होंने फटाफट डीसी साहब को भी डायरेक्शन दिया। तो आज हम सुबह मॉर्निंग में जाके डीसी साहब से हमने बोला, वी आर फुल्ली एग्रीड विद द लैंड विच यू हैव डिमार्केटेड नियर एयरपोर्ट और उस एयरपोर्ट के सामने, बट एरिया एंड क्वान्टिटी ऑफ द लैंड मस्ट बी इंक्रीज्ड। पहले उन्होंने तीन कनाल का लिखा था, तो हमने उसको तीन की जगह पे हमने 10 कनाल का हमने लिख के उनको दे दिया। तो वो बोल रहे कि कपल ऑफ डेज में इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में निकालेंगे वो ऑर्डर। तो साथ ही साथ हमने ये किया, एक हमने डीपीआर बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को अभी हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो ले से अभी नहीं पहुंचे, तो नेक्स्ट टाइम पे हम डीपीआर भी बना लेंगे। एक कम से कम तकरीबन उसमें जाएगा 15-20 करोड़ का, तो कम से कम जाएगा जाएगा। कंपाउंड वॉलिंग उसमें होगा, हमारा कुछ सारा टैंकी सिस्टम है वहां पे सेटअप करेंगे। तो इसमें भी हमें आने वाले दिनों में हमें अब सब लोगों की, खासकर खसूसन हमें यहाँ के जितने भी हम इदारे हैं, हम उनके बहुत ही मशकूर है, बहुत ही हम उनके हम उनसे और तवक्का भी रखते हैं कि उनका हमेशा साया हमारा साथ रहेगा, उनका दुआ रहेगा, हमें दुआओं की दरकार है। इसमें मैं आप लोगों को मेंशन करूँ हम किन किन लोगों से हमने मुलाकात की। सबसे पूर्ण बात यह है कि यहाँ पे एक हज हाउस हो, अच्छा सा हो, हम फोकस करगिल का करेंगे अब सबसे ज्यादा। हाँ, एलोकेशन होगा, हम कैंप ऑफिस लेह के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हमारा फोकस जो होगा फर्स्ट स्टैंड पे हमारा करगिल में होगा। सेकेंडली लेह में भी हमें, हमारे यहाँ से बहुत जवार आते हैं विंटर में, उनको बैठने के लिए बहुत से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो लेह में भी ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन मूव किया हुआ है ऑनरेबल एलजी साहब को, तो हम अपने पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट और हमारे फॉर्मर सीसी से उनके मदद से हम वो भी एलोकेट करा के वहाँ पे भी हम फंड्स की हम कोशिश करेंगे। फॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिस वगैरह अभी सारा कुछ एलोकेट हो गया, वो बन भी रहा है, उसका रेनोवेशन वगैरह हुआ, तो पासपोर्ट अभी रिसेंटली अभी हम कम्युनिकेशन हुआ तो उनके साथ, तो उन्होंने बोला जाइए आप देख के आइए। तो वो उनका कहना है कि वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो खोल रहे हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र, वो कैंप नहीं, कैंप भी लगेगा तब तक फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और साथ साथ हम कोशिश यही करेंगे उसी के साथ हम पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है परमानेंटली यहाँ पे खुल जाए। और साथ ही साथ मैं ये बताऊँ आपको, द्रास वालों का भी यही रिक्वेस्ट था और हमारे संघ वाले के भी, कि वो सब डिविजन पे पासपोर्ट सेवा कैंप अगर लग जाए तो हम उसका कोशिश करेंगे। अब वो उसमें जस्टिफिकेशन होता है नहीं होता है उस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, तो हम डिविजन वाइज हम लोगों का फॉर्म भी भरने देंगे, डिवीजन वाइज हम लोगों का वैक्सीनेशन भी करेंगे। एक सेकेंडली फ्लैट का इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा लेने के टाइम पे, पहले एक फ्लैट में 2 चला गया, फिर 4 चला गया, उसके बाद फिर 150-130, वो नहीं करेंगे हम जब इंशाल्लाह आने वाले सालों में 2027 में हम जितने भी यहाँ से आते हैं, 200 आते हैं, 300 आते हैं, तो 2 या 3 फ्लैट में हम एडजस्ट करने की हम कोशिश करेंगे।
1: پاسپورٹی خدماتون شتن پور چوچاون دونا حجا جون لر گلا سہولیاتون لب چوچاون حج کمیٹی لداخ سی گوچی رنگ یوتی ان زرے زیزدی وصلا چیرمن ننگم بو ممبر شیخ لیاقت علی حاجی غلام محمد زہرا بانو اشی مالو دونا محمد حسین پریس کانفرنس پیان جوکسے یوت پین
2: مشن ڈائریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن یونین